0: एक्सेस की ब्यूटी पता क्या होती है कि जब वो एक्सेस बन जाते हैं ना तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज माई एक्सेस फील दैट अबाउट मी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई ऑल्सो फील दैट वे अबाउट माई एक्सेस. जब मैं उन्हें डेट कर रही होती हूँ मुझे उनमें एक अच्छी चीज़ नहीं दिखती है. जैसे ही मैं डेट करना खत्म करती हूँ, हमने वैसे ये भी बुरा नहीं था, वैसे रात को तो कडल्स हो ही जाते थे, वैसे खाना तो ठीक ठाक बना ही लेता था, एंड लाइक हाय हाय ये मजबूरी, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड रे. वाई अगर आप भी ऐसे अपने एक्स को सोचकर ये सोच रहे हो कि शायद ब्रेकअप में आपने थोड़ी जल्दी कर दी, वाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर एंड वी विल कंपेयर नोट्स. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, बी अ रियली गुड पर्सन, हिट मी अप, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: जस्ट बिकॉज आप अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, दैट्स व्हाई यू हैवंट चीटेड ऑन हिम. बट उस दिन आप क्या करते, आप मूड में थे, बॉयफ्रेंड टाउन में नहीं था, तो उसके बेस्ट फ्रेंड से काम चलाना पड़ा यार. आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, ऑब्वियो. अगर जिंदगी में आपने ऐसे ऐसे गन मचाए हैं ना जिसके बारे में आप और किसी को नहीं बता सकते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, गेट इन टच विद मी एंड वी विल गेट टॉकिंग. अभी तो मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
1: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: वैसे आप कोई ठीक वीक तो नहीं हो, आपने जो अपना मुझे कन्फेशन इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया था, दैट वाज लाइक आई डोंट थिंक दिस बेब इज हैविंग अ गुड टाइम इन लाइफ.
1: नाउ यू सी.
0: आई डू सी. मैं आपको रोशिफाई भी करना चाहती हूँ, बट मैं आपकी स्टोरी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ. एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वारदात की रात को या दिन को या जो भी था?
1: आप पूछो मत, वो रात मैंने जिंदगी भर अपने दिल में बसा के रख ली है अब बेचारा वो. ठीक है, खैर मैं आपको बता देती हूँ मेरी स्टोरी. मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम लोग पार्टी में गए थे वीकेंड पे, एंड वी थॉट कि हम जाएंगे चिल करेंगे, एंड यू नो व्हाट, वी वर स्टेइंग विद आवर फैमिली. तो वहां पे फिर हमने सोचा अब क्या करें, हमें थोड़ा सा वी वर गेटिंग नॉटी एंड वी वांटेड टू मेक आउट एंड स्टफ. सो हम वही जो क्लब का देयर वाज दिस होटल आल्सो क्लब के ऊपर, वहां पे हम गए और हम लोग एकदम नॉटी नॉटी सा होने लगे, एंड हम लोग बेड पे बैठे एंड सब कुछ, एंड वी वर मेकिंग आउट, एंड फिर अचानक से मेरे बालों पे उसने हाथ फेरा. एंड हुआ क्या था, मैं कुछ दिन पहले ही एक्सटेंशन करवा के आई थी अपने बालों में, और इतने सुंदर एक्सटेंशन, दे वर ब्लॉन्ड, सो लॉन्ग एंड सो थिक, इतने सुंदर एंड वेरी अमेजिंग. सो उसने, कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैन उसने मेरे बालों में अपना हाथ फेरा एंड मेरे एक्सटेंशन उसके हाथ में आ गए. एंड दिस गाय, ही स्टार्टेड फ्रीकिंग क्राइंग. इमेजिन भाई, ऐसा कौन करता है? अब मैं उसे क्या बताती, भाई तू क्यों रो रहा है, ये मेरे नकली बाल है, मैं नहीं बता सकती. आई वाज सो डिसऑर्डर्ड सीइंग हिज फेस.
0: एक सेकंड, उसको ये लग रहा था कि
1: नाउ यू सी.
0: नहीं, एक सेकंड, तो उसको ये नहीं पता था कि आपके नकली बाल हैं?
1: नहीं, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, ही वाज क्लूलेस. मुझे लगा कि उसे उसे पता लग गया होगा कि इसके बाल सच्ची में ग्रो हो गए हैं, बाल सच्ची में आ गए हैं.
0: आपने उस बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया, बट अब मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ. आपको रोशिफाई कर दूं?
1: हाँ कर दो ना.
2: You've been roshified.
0: Babe, my honest suggestion is the next time you get hair extensions or nail extensions, अपने boyfriend को पहले बता देना, ठीक है?
1: सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. पर वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना ये सुन के?
0: नहीं यार, I mean, अगर उस आपके बाल उसके हाथों में फिर भी वो आपके साथ है, I think he's gonna stick with you for a while, for sure.
1: Right.
0: All the best to you, babe. It was amazing talking to you. Thank you. Thank you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई amazing confession है that you want to share with me, hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: कन्हैया लाल की।

0: जस्ट बिकॉज आप अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो दैट्स व्हाई यू हैवंट चीटेड ऑन हिम, बट उस दिन आप क्या करते, आप मूड में थे, बॉयफ्रेंड टाउन में नहीं था, तो उसके बेस्ट फ्रेंड से काम चलाना पड़ा यार, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, ऑब्वियो।
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: अगर जिंदगी में आपने ऐसे ऐसे गन मचाए हैं ना जिसके बारे में आप और किसी को नहीं बता सकते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, गेट इन टच विद मी एंड वी विल गेट टॉकिंग। अभी तो मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: वैसे आप कोई ठीक वीक तो नहीं हो, आपने जो अपना मुझे कन्फेशन इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया था, दैट वाज लाइक आई डोंट थिंक दिस बेब इज हैविंग अ गुड टाइम इन लाइफ।
2: नाउ यू सी,
0: आई डू सी। मैं आपको रोशिफाई भी करना चाहती हूँ, बट मैं आपकी स्टोरी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वारदात की रात को या दिन को या जो भी था?
2: आप पूछो मत, वो रात मैंने जिंदगी भर अपने दिल में बसा के रख ली है अब बेचारा वो। ठीक है, खैर मैं आपको बता देती हूँ मेरी स्टोरी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम लोग पार्टी में गए थे वीकेंड पे, एंड वी थॉट कि हम जाएंगे चिल करेंगे, एंड यू नो व्हाट, वी वर स्टेइंग विद आवर फैमिली, तो वहाँ पे फिर हमने सोचा अब क्या करें, हमें थोड़ा सा वी वर गेटिंग नॉटी एंड वी वांटेड टू मेक आउट एंड स्टफ, सो हम वही जो क्लब का देयर वाज दिस होटल आल्सो क्लब के ऊपर, वहाँ पे हम गए और हम लोग एकदम नॉटी नॉटी सा होने लगे, एंड हम लोग बेड पे बैठे एंड सब कुछ, एंड वी वर मेकिंग आउट, एंड फिर अचानक से मेरे बालों पे उसने हाथ फेरा, एंड हुआ क्या था, मैं कुछ दिन पहले ही एक्सटेंशन करवा के आई थी अपने बालों में, और इतने सुंदर एक्सटेंशन, दे वर ब्लॉन्ड, सो लॉन्ग एंड सो थिक, इतने सुंदर एंड वेरी अमेजिंग। सो उसने, कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैन उसने मेरे बालों में अपना हाथ फेरा एंड मेरे एक्सटेंशन उसके हाथ में आ गए, एंड दिस गाय ही स्टार्टेड फ्रीकिंग क्राइंग, इमेजिन। भाई ऐसा कौन करते है, अब मैं उसे क्या बताती, भाई तू क्यों रो रहा है, ये मेरे नकली बाल है, मैं नहीं बता सकती, आई वाज सो डिसऑर्डर्ड सीइंग हिज फेस।
0: एक सेकंड, उसको ये लग रहा था कि
2: नाउ यू सी,
0: नहीं एक सेकंड, तो उसको ये नहीं पता था कि आपके नकली बाल हैं?
2: नहीं, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, ही वाज क्लूलेस। मुझे लगा कि उसे पता लग गया होगा कि इसके बाल सच्ची में ग्रो हो गए हैं, बाल सच्ची में आ गए हैं।

0: बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया, बट अब मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको रोशिफाई कर दूँ?
1: हाँ कर दो ना.
2: You've been roshified.
0: Babe, my honest suggestion is the next time you get hair extensions or nail extensions, अपने boyfriend को पहले बता देना, ठीक है?
1: सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. पर वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना ये सुन के?
0: नहीं यार, I mean, अगर उस आपके बाल उसके हाथों में फिर भी वो आपके साथ है, I think he's gonna stick with you for a while, for sure.
1: Yeah, right.
0: All the best to you, babe. It was amazing talking to you. Thank you. Thank you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई amazing confession है that you want to share with me, hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

Mirchi. It's hot.

0: आज से 20 दिन के बाद हम दोनों मिलने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल AF. ऐसा काउंटडाउन अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो इसे यूज़ ज़रूर करना, बिकॉज देर इजंट एनीथिंग मच स्वीटर देन हैविंग अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि आप अपने लव्ड वन से कब मिलने वाले हो. मैं ज़िंदगी में एक ही बार एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं चला वो, बट उस रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए ये जो रिमाइंडर वाला बिजनेस है ना, ये हम दोनों ने बहुत किया है. हम हमेशा एक काउंटडाउन सेट करते थे कि आज से 20 दिन के बाद मिलेंगे. अब वो 20 दिन 18 दिन हो गए हैं, अब वो 16 दिन हो गए हैं, एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट जस्ट कीप्स द रिलेशनशिप रियली रियली अलाइव. एंड जब तक हम दोनों उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, दिस वॉज वन मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. तो अगर आप भी ऐसे ही किसी के साथ प्यार में तो हो लेकिन आपके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे हैं, देन ट्राई दिस काउंटडाउन बिजनेस. आई थिंक इट माइट जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ लव एंड रोमांस टू योर ब्यूटिफुल लव लाइफ. और एक बार दिस वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोला मत भूलना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर और FB पर. सो डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, लेकिन रिमेंबर वन थिंग आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड.
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। एंड उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिटॉल की प्रोडक्शन, अलोंग विद कुटले खान. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. गाना नंबर 9 पर हमने सुना ए अजनबी. ऐसा नहीं होता लाइफ में कभी कभी कोई इंसान होता है जिसको हम पूरी तरह पाते भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली लूज भी नहीं करते हैं. वो एक बीच का एक स्पेस है जहाँ कोई नाम नहीं है, ना उसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, क्लोजर भी नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दीज सॉन्ग्स इज कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है. एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. @RJ कनिका पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana, Gana, Gana Indie Top 10. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़े इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर ला के प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में, वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ही गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushboo
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहां लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूं मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ नाइयो, चुपके से एक ख्वाब जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इस इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रौर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांज की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांज स्टाइल का गाना। गाने का नाम है डीलर। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाने सजेस्ट करनी है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी। मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रिसेंटली सुने नहीं। लास्ट वीक द सॉन्ग वी फीचर्ड वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है चन्नावे बाय कुनाल गांजावाला। अर्ली 2000s का वो फेज जब इंडी पॉप एंड नॉन फिल्म म्यूजिक अपनी पीक पर था। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था। कुनाल गांजावाला की आवाज में जो उस टाइम ऑलरेडी भीगे होठ तेरे जैसे गानों की वजह से लोगों के रेडार पर आ चुकी थी, लेकिन इस गाने का मैजिक ना कुनाल गांजावाला की आवाज में है ना इसके म्यूजिक में है। आई ट्रूली फील दैट जो डुअलिटी है ना इस गाने की, द कंट्रास्ट इन इट्स आइडेंटिटी। अब सरफेस पे ये गाना पॉपी पेपी, एकदम हाई एनर्जी, फुल बीट्स ऐसे कि आप ग्रूव करे बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप रुक के इस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो सॉन्ग इज एक्चुअली अबाउट लॉन्गिंग। चन्नावे घर आ जा, मतलब वापस आ जाओ, किसी का वेट करने वाली बात है, जब किसी के बिना दिल खाली लगे वैसी वाली बात है इस गाने में। इन शॉर्ट वो मीम याद है आपको, हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक, बंदा डांस कर रहा होता है, एंड व्हाट द सॉन्ग एक्चुअली मींस, बंदा रो रहा होता है। बट दिस सॉन्ग वॉज सच अ रेजर, कॉलेज फेस्टिवल्स, रियलिटी शोज, हर जगह ये गाना परफॉर्म होता था, एंड आज हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बन चुका है। आज भी कहीं सैटरडे डीजे नाइट में जाओगे, चन्नावे गाना बज जाएगा, एंड आई एम श्योर द रिएक्शन विल बी इनसेन। सबने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कुनाल गांजावाला की आवाज में द ओजी चन्नावे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। वंदी का नाम है आरजे कनिका, इंस्टाग्राम पर @RJ कनिका। अपना रिपोर्ट कार्ड हमें कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन गानों के रिपोर्ट कार्ड को सुनने में सबको मजा आता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन आदित्य रेखारी कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कुक स्टूडियो भारत ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद करण औजला इक्की का फॉर अ रीजन दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। फिर गाना नंबर 7 पर था गुरु रंधावा का वोग। संजू राठौर का बैंगल्स ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 6। फिर मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ की आवाज में डीलर ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की बैक अगेन एज योर बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। Now it's time for the top 2 songs of the week. Anoop Jain ki awaaz, unki composition, gaane ka naam hai Arz Kiya Hai, a Coke Studio song. 14 hafton se is countdown par barqarar, Arz Kiya Hai is this week on gaana number 2 and the numero uno song of the week. It makes me feel so proud, man. Pichle hafte se 2 position upar jump mara is gaane ne. Gaane ka naam hai Bairan, a Haryanvi song by this collective act called Banjare. उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। ये 2 इनक्रेडिबल गाने, अर्ज किया है बाय अनूप जैन, बैरन बाय बंजारे ऑन गाना नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। वंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi Top 20. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता। कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ। इस हफ्ते दोनों हैं। ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में, और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता। कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना रहा था? जवाब इस शो में है। लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20।
3: नंबर 20।
2: भूत बंगला का ओ सुंदरी, दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो आगे है वो अलग है। धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक। पहले जाइए सजना, ये डेब्यू कर रहा है, लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल, हर एक सुर। और फिर इश्क जलाकर, रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है।
4: नंबर 19।

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था 2006 में, इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद दिस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर्स औरत का कभी होता है कि आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड दे सकम टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। OTT ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब।
2: पिक ऑफ द वीक।
3: तुमको भी है खबर,

ये था रूप दी रानी, 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, द पति, वामिका गब्बी, हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान, हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं, एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन, एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर वेट अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी subject पे, एक ही थी, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ consequence था, दर्द था, discomfort था, लोग सिनेमा हॉल से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्रायंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2, एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक। नंबर

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स, तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

मोहित चौहान, ए आर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए।

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है,
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 प्लेसेस अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 प्लेसेस, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम, एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

RARA, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा, वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची. नंबर 1.

0: 11 बार 11 टाइम्स ऑन नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरीन ओवर एंड आउट.
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

जा, अभी मौसमों का बदलना बाकी है। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर सा

मिर्ची, इट्स हॉट।

हाय, गुड मॉर्निंग यू गॉर्जियस स्लीपी हेड. मैं हूँ प्रस्तुला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम्हारे मॉर्निंग्स. और लाइफ इन द यूएस इज कसम से, एक साइड पर प्रोडक्टिविटी है, दूसरी साइड पे मम्मी का वॉइस नोट है. एंड समहाउ द वॉइस नोट विंस एवरी सिंगल टाइम. आज का मिशन सिंपल है, ट्रैफिक को टॉलरेट करना, बॉस को इम्प्रेस करना और खुद को कन्विंस करना कि हाँ टुनाइट आई विल स्लीप ऑन टाइम. मेरी लाइफ में पीछे से नरेटर हमेशा कहता है और आज फिर वो टाइम पर नहीं सो पाई. By the way, if your morning feels a little bit scrambled, you are at the right place. This is Mirchi Mornings, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं थोड़ी यहाँ वहाँ की, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, थोड़ा सा बैक होम का नॉस्टैल्जिया और साथ साथ में कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम सुनने वाले हो मेरे यानी कि प्रिस्सला के साथ. बकल अप, बाटा कप, शो शुरू हो चुका है, तुम्हारा दिन शुरू हो चुका है एकदम मिर्चीदार अंदाज में. जल्दी से जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIBRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चलो हम चलने वाले हैं टाइम ट्रैवलिंग के लिए। वे बैक इन 1718 न्यू ऑरलीन्स वाज फाउंडेड। देन इन 1915 द आरएमएस लुसिटेनिया वाज संक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, बैटल ऑफ द कोरल सी, फर्स्ट नेवल बैटल वेयर एनिमीज फॉट विदाउट इवन सीइंग ईच अदर। देन कम्स 1945, जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, पेविंग द वे फॉर VE Day, that is Victory in Europe Day. And today is also very special because the Nobel Prize winning legend Rabindranath Tagore was born. The man wrote poetry so deep, even our late night overthinking could never compete. Oh, and in 2000, Vladimir Putin became Russia's president for the first time. Okay, now tell me, agar tumhari life par history book likhi jayegi, to uska title kya hoga? Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. And now let's head straight into Mirchi Dar Bangers. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein sun rahe ho Mirchi Mornings. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग माय देसी स्क्वाड, दिस इज प्रिसला विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो पता करते हैं बाहर का हालचाल क्या है, यानी कि मौसम का फोरकास्ट। इट्स अराउंड 51 डिग्रीज फारेनहाइट राइट नाउ एंड इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन थैंक यू टू द विंड जो फील करा रही है कि 48 डिग्रीज फारेनहाइट चल रहा है तापमान, मतलब हवा फुल एटीट्यूड में एंड हेयर इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। द गुड न्यूज दो इज सनशाइन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, सो यस फाइनली अ डे वेयर द स्काई सेड fine, I'll cooperate with all of you. Today's temperatures are hanging between 49 to 65 degrees Fahrenheit with it feeling like 45 to 65 degrees Fahrenheit. Basically mornings keh rahi hai bhaiya jacket pehen lo, afternoon keh raha hai maybe I overreacted in the morning. Also compared to yesterday, आज थोड़ा सा ठंडा रहने वाला है। Yesterday hit around 70 degrees का maximum temperature. Today we are topping out closer to 65 degrees Fahrenheit. So if you packed away your sweaters after one sunny day, congratulations, you played yourself. Rain update, last 24 hours में सिर्फ 3 millimeters की बरसात हुई थी and next 24 hours में 0 rain is expected. Nature ने कहा भाई आज के लिए drama बंद है मेरा। And hey, आज का fashion tip है, be the layer का player that I always recommend you to be. Have a lot of water, keep yourself hydrated. वो glass skin चाहिए कि नहीं चाहिए? And बाहर निकलते time, a must do thing is to wear your sun protection SPF 50++++. And right now, go and follow me. Mirchi Pris is my handle name across social media. That's Instagram and X. And WhatsApp करो मुझसे बात करने के लिए 9033 Mirchi पर. That's 9033647244. फिलहाल चलते हैं Mirchi दर bangers की तरफ. Stay tuned and stay hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Good morning. This is Priscilla with you on Military Mornings, where I don't just wake you up, I also gently remind you that Indian parenting comes with built-in performance reviews. So here's the story which is going viral right now. Dibyendu Parmanik is a student from Auxilium Convent School in Siliguri who scored an unbelievable 499 marks out of 500 in his ICSE class 10th exam. But first of all, एक्सक्यूज मी, बेटा एक मार्क कम आया आपका, एक मार्क, एंड आई यूज्ड टू लूज दैट मेनी मार्क्स जस्ट राइटिंग माय नेम रॉन्ग इन पैनिक. बट वो इस वजह से वायरल नहीं हुए हैं. द इंटरनेट रियली पॉज्ड व्हेन हिज मॉम सेड ओनली इफ ही हैड स्टडीड अ लिटिल हार्डर, एंड एवरी देसी किड अक्रॉस द ग्लोब सडनली अनलॉक्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा साइमल्टेनियसली. ऑनेस्टली दो, दिस इज पीक इंडियन पेरेंट एनर्जी. 95% मार्क्स है, वेयर इज दैट 5% बेटा? हमारे देसी पेरेंट्स आर लाइक, ओलंपिक मेडल जीत लिया बेटा तुमने, वेरी गुड. लेकिन श्यामा जी के बेटे को ना गोल्ड मिला है. वैसे जोक्स अपार्ट, मैसिव कंग्रेचुलेशंस टू दिबेंदु, बिकॉज 499 इज इनसेन. दैट्स नॉट अ स्कोर, दैट्स लाइक जीनियस लेवल पावर टू 100. एंड स्पीकिंग ऑफ मॉम्स एंड अनकंडीशनल लव, दिस मदर्स डे आर के जूल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी माँ की ममता विद गारंटीड गिफ्ट्स फॉर एवरी मॉम. बिकॉज लेट्स बी रियल, मॉम्स डिजर्व डायमंड्स एंड मच मोर जस्ट फॉर सर्वाइविंग अस. आरके जूल्स हैज डन इट अगेन. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस मिल रहा है. मदर्स डे स्पेशल चल रहा है वहां पर, तो वहां पर जाना बनता है. इफ योर मॉम स्टिल इंट्रोड्यूसेस योर अचीवमेंट्स बिफोर योर नेम, वेलकम टू द क्लब. एंड राइट नाउ टेल मी द फनीएस्ट देसी थिंग योर मॉम डज. इंस्टा एंड एक्सपर्ट मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल जब पक्के बैठो फॉर मिर्ची, देयर बैंगर्स व्हिच आर कमिंग अप राइट योर वे. मिर्ची मॉर्निंग्स फॉर, दिस इज प्रिसिला विद यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है गोल्ड एंड सिल्वर का रेट जानने की।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,740, $4,740 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अक्षय तृतीया की सेलिब्रेशन के लिए इससे पहले गोल्ड के प्राइस ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग के लिए आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर लेके जाए और 9 किश्तों में पैसे दे। कैसे? आ जाइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का अपडेटेड रेट। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Uh-huh.

0: AG the gangster.
1: Good morning. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में and welcome to Mirchi Hour का 3 for the last hour.
2: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले युगांडा के आर्मी चीफ मजूही काइने रुगाबा हैज गॉन मेगा वायरल आफ्टर मेकिंग सम ड्रामेटिक कमेंट्स अबाउट टर्की वीक्स आफ्टर डिमांडिंग $1 billion एंड जोकिंगली आस्किंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन फ्रॉम टर्की एज अ वाइफ एंड नाउ ही इज सेइंग आई कॉन्कर्ड टर्की. इंटरनेट का रिएक्शन इज अ कलेक्टिव साइड आई. ऑनेस्टली ये डिप्लोमेसी काम एंड लॉस्ट आर्ग्यूमेंट ज्यादा साउंड करता है. नंबर टू पर वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स इज बजिंग आफ्टर ममता बैनर्जी said she won't resign after the poll loss, while TMC clarified that comments made by individual party leaders are their personal views and not a party official stand. Basically, political group projects work exactly like college group projects. One person says something and everyone else goes, ye hamara ladka nahi hai. And number three par, Priyanka Chopra and Nick Jonas just gave fans a peek inside their peaceful Lord Shiva temple space at their LA home. Fans loved seeing Nick participating in prayers too. And honestly, Desi culture traveling from Delhi to LA, we love it. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta or X par mujhe apne saath rakho. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mujhse baat karne ke liye 9033 Mirchi dabao, yani ki 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब राशि जोन नंबर वन में हम बातें करने वाले हैं राशियों की.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: It is यानी मेष राशि. आज किसी का हेल्प मी यार माइट एक्चुअली मीन डू माय वर्क फॉर मी. सो स्टे स्मार्ट. आज तुम्हारा लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. ट्रस्ट इश्यूज लोडिंग टुडे. टॉरस, नॉट एवरीवन इन अथॉरिटी नोज एवरीथिंग. शॉकिंग, आई नो. लकी कलर फॉर यू इज बेज. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि. वीनस इज मेकिंग यू फील रिच. योर वॉलेट डिसएग्रीज. ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो. आज लकी कलर फॉर यू इज बर्नट ऑरेंज. लकी नंबर इज 27. कैंसर यानी कर्क राशि. करियर ड्रीम्स आर शाइनिंग बट डोंट यू फॉरगेट फैमिली एंड योर इमोशनल सपोर्ट पीपल. और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस का वाईफाई आज डिस्कनेक्ट करो थोड़ा. लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 8. लियो यानी कि सिंह राशि. समवन अराउंड यू इज बीइंग एक्स्ट्रा ड्रामेटिक टुडे. डोंट एंगेज, मेंटली म्यूट देम लाइक अ बैड पॉडकास्ट. लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि. वर्क प्लेस पे सब क्लियर नहीं है आज. सो डबल चेक एवरीथिंग. बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज बट प्रोडक्टिव. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर ग्रे. लकी नंबर इज 14. एंड दैट्स इट फॉर पार्ट वन ऑफ राशि जोन. मैं बोले तो प्रिसिला मिर्ची मॉर्निंग्स पर थोड़ी सी देर में लेकर आऊंगी बाकी बची 6 राशियों को. तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: लवलीज, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू राशि जोन नंबर 2, जहाँ पर हम बाकी बची 6 राशियों की बातें करने वाले हैं.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज जो गॉसिप मिले ना, वेरीफाई करो उसे पहले. नॉट एवरी ट्रस्ट मी ब्रो डिजर्व्स ट्रस्ट. लकी कलर इज रोज गोल्ड. लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, समवन मे अनॉय यू टुडे, बट डोंट कट पीपल ऑफ फास्टर देन बैड वाईफाई. लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट पर्पल. लकी नंबर इज 9. सजिटेरियस यानी धनु राशि, क्रिएटिव क्लैशेस पॉसिबल हैं आज के दिन. ब्रीद बिफोर सेंडिंग दैट ड्रामेटिक टेक्स्ट मैसेज. ओके, वीकेंड तक सब नॉर्मल हो जाएगा, सो चिल. लकी कलर इज मस्टर्ड येलो. लकी नंबर इज 35. केप्रिकॉन यानी मकर राशि, यस you are right. No, you don't need to announce it like breaking news. Be nice today, okay? Lucky color for you is forest green. Lucky number is 1 and 1, 11. Aquarius, yani kumbh rashi, family matters need patience today. Say your piece calmly and then revisit things later. Basically, less Bollywood climax, more peaceful sequel. Lucky color for you is ice silver. Lucky number is 28. Pisces, yani mean rashi, stop chasing perfection. Yaar, you're already doing better than you think. Progress over pressure today. Lucky color is coral pink. Lucky number is 6. Bole to 6. And that's it for Rashi Zone number 2. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. And now you gotta go to Instagram and X. Jahan par jaakar tum mujhe follow kar sakte ho. Mujhse baate kar sakte ho. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ओटीटी के दौर में एक एड ब्रेक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और आज OTT पर कोई भी कंटेंट देखते हैं ना, तो खुद ब्रेक डिक्लेयर करना पड़ता है। टीवी पॉज करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं और फिर टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। हाँ, बोरिंग। OTT के पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तब लाइफ में ना एड्रेनलिन रश हुआ करता था। जैसे ही एड ब्रेक आता तो हम बच्चे भागकर बाथरूम हुआ आते, मम्मी की लगाई हुई खाने की प्लेट ले आते, जो काम होता ना भाग भाग कर खुद को टाइम करके एड ब्रेक में निपटा देते। और जैसे ही एड ब्रेक खत्म होता ना तो एक कजन चिल्लाकर कहता, पिक्चर शुरू हो गई, और हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर फर्नीचर की नदियां पार करते हुए तीर की तरह उड़ते हुए टीवी के सामने पहुंच जाते थे। और शायद मेरी ये जो जल्दी जल्दी काम करने की आदत है ना, ये यहीं से आई है। अब भी शायद हर एक काम करते वक्त इन द बैक ऑफ माई हेड एड ब्रेक खत्म होने का अलार्म चल रहा होता है, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। लेकिन अब कुछ मिस करने का नहीं, एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है। 90s की बातें और 90s के गाने विद मी सारा। तो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब काले काले बाल गाल गोरे गोरे अरे ओरे ओरे, याद आया ये गाना? और ये गाना तो फ्रॉम द फिल्म जिद्दी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And this film, जिद्दी, इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का रोल बड़ा पसंद आया था. In fact, as a kid, मैं तो डर गई थी भाई उस रोल से. लेकिन आशीष विद्यार्थी का कहना था कि उनका ये जो रोल था ना, ये डायरेक्टर ने एक्सटेंड कर दिया था. उनका रोल वॉज सपोज टू एंड एट द इंटरवेल, लेकिन फिर इवेंचुअली उस कैरेक्टर को मेन विलन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और फिर उसको लंबा चलाया थ्रू आउट द फिल्म. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म, तो इस फिल्म से ज्यादा किसी ने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट और 1997 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी. और इसके गाने, जिनमें से एक गाना ये भी था कि मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर. जस्सी का गाया हुआ ये गाना तो 90s की पार्टीज में बड़ा मशहूर हुआ करता था यार, जो हमने कभी अटेंड नहीं करी क्योंकि हम तो बच्चे थे. लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता था कि ये गाना हिट है क्योंकि काउंटडाउन शोज पर हमेशा ये गाना आया करता था. पता नहीं कितने जमाने तक तो काउंटडाउन शोज पर ये गाना रहा है. और ऑफकोर्स जब भी कभी इधर उधर म्यूजिक सिस्टम बजता था, किसी शादी में या किसी की छत पर या कहीं पर भी, तो ये गाना तो चलता ही चलता था. हमें भी पसंद था और सबको पसंद था, तो बात जाहिर थी, जग जाहिर थी कि ये गाना दुनिया भर को पसंद है. और इस गाने ने पंजाबी पॉप को इसी तरीके से बॉलीवुड मेनस्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया था. एंड इनफैक्ट उस जमाने की रिसर्च वर्क के हिसाब से ना, ये फिल्म जो हिट हुई ना, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की वजह से बहुत हिट हुई, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये यूपी बिहार और पंजाब जैसे स्टेट्स में बहुत चली थी बिकॉज ऑफ द रॉ अपील. और सीटी मार डायलॉग्स लोगों को बड़े पसंद आए, जो आई थिंक लोगों के आज भी पसंद है. पब्लिक आज भी ना खूब सीटियां बजाती है जब डायलॉग्स एकदम अटपटे निकल कर आ जाते हैं, या यूं कहें कि चटपटे निकल कर आ जाते हैं. और साउथ की फिल्में इसी वजह से काम कर रही है. इस फिल्म को देखने के बाद विलेन से तो डर लग ही रहा था, ऊपर से सनी पाजी का गुस्सा, वो देखकर भी ऑडियंस बड़ी खुश हो रही थी. लेकिन जो ऑडियंस सनी पाजी का गुस्सा देखकर खुश हो रही थी ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो लोगों को डरा रहा था. कैसे, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, सनी पाजी के गुस्से से लगता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा जब जिद्दी मूवी शूट हो रही थी ना, उस टाइम पर सबको लग रहा था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And there was this one scene जहां पर सनी पाजी को ना एक टेबल गुस्से में तोड़नी थी। वो टेबल थी तो प्रॉप, लेकिन टूट ही नहीं रही थी जो कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे। तो सनी पाजी ने फुल इंटेंसिटी मोड में एक रियल वुडन टेबल तोड़ दिया यार, और जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो सारे के सारे जो है एकदम भौचक्के रह गए। एंड इन फैक्ट ड्यूरिंग द इंटेंस सीन्स ना, सनी पाजी अपने कैरेक्टर में इतने ज्यादा रहा करते थे कि एक को एक्टर ने जोकिंगली ये भी कह दिया था कि जब सनी पाजी गुस्से में हो रहे होते ना, अपने कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो आप कट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हो और दुआ करते हो कि ये गुस्सा जो है ये ठंडा हो जाए, ताकि ये कट अपने आप निकल कर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस गुस्से के डर से कोई सेट पर कट नहीं बोला करता था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे एक और मजेदार बात है इस फिल्म के बारे में, और वो ये है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनुआ, उन्होंने ये बात बताई थी कि उनके पास ना इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा आइडिया था, जिस पर कि इन्होंने पूरी तरीके से काम नहीं किया था। एक प्रॉपर स्टोरी नहीं थी, और ये लोग जा रहे थे सनी पाजी के पास इस फिल्म की स्टोरी को नरेट करने के लिए। तो रातों रात उन्होंने और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं बबलू पचीसिया, उन दोनों ने बैठकर एक स्टोरी बनाई, और पचीसिया जो है वो नोटबुक और पेन लेकर बैठे और उन्होंने पूरा का पूरा जॉट डाउन किया। फिर उसके बाद वो लोग गए स्क्रीन प्ले राइटर के पास, वहां पर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, और अगली सुबह दे वेंट एंड गेव द नरेशन टू सनी देओल। और इतनी मेहनत उनकी सफल हो गई क्योंकि सनी पाजी ने बोल दिया हाँ। और जैसे ये लोग नरेशन के बाद उस होटल रूम से बाहर निकले, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ने एक दूसरे को जो झप्पियां पाई हैं, बिकॉज इट वाज अ बिग डील टू एक्चुअली गेट सनी देओल ऑन बोर्ड। एंड सनी देओल नरेशन में अगर ना कह चुके तो ना कह चुके, उसके बाद उनकी हाँ कभी होती नहीं है। स्टोरी लाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ये सब कहते हैं, और वो बड़ी संजीदगी से बैठ के स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स धक धक तो सभी का दिल कर रहा होता है उस टाइम पर। लेकिन एक बात और निकल कर आ गई इस फिल्म से कि फिल्म का नाम तो जिद्दी था ही था, और इस फिल्म में काम करने वाले भी जिद्दी ही थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हर थर्सडे की शाम हमारा पूरा खानदान घर के टीवी वाले कमरे में ना जमा होकर टीवी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा होता था।
1: एक भाई देख, एक भाई देख।
2: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: देख भाई देख जो हमारी पूरी फैमिली को देखना बहुत पसंद था। ये शो जब हम तब देखते थे तो क्या हमने ये रियलाइज किया कि इसी शो के काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जो हमें आज भी टेलीविजन पर दिखाई देते हैं। एंड लेट्स बिगिन विथ संजू की वो इरिटेटिंग पोजेसिव सी गर्लफ्रेंड याद है आपको, शिल्पा। शिल्पा और कोई नहीं बल्कि अपनी उर्वशी ढोलकिया ही है। एंड साहिल याद है, संजू और कृति का कजिन। He is played by Amar Upadhyay, who later on was known as India ka official damad Mihir. And Sanju, yani ki Vishal Singh himself, abhi kuch time pehle hi ye rishta kya kehlata hai mein Naitik ka role play karte hue nazar aaye the. But let me tell you one more thing about Vishal. Inki jo acting ke career ki shuruaat hui thi, wo Dekh Bhai Dekh mein as Sanju nahi hui thi, balki Gulzar Sahab directed Mirza Ghalib mein Vishal Mirza Ghalib ke bachpan ka role play karte hue nazar aaye the. और सुनो मेरी ये बात ना गांठ बांध के रख लो कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, हर शाम के बाद सवेरा है। You tune into Midday Mohabbat with me, Sara on Mirchi. It's hot.

0: जानम समझा करो रानी मुखर्जी का खुद पे कॉन्फिडेंस कि ये गाना तो निकल के आया जहां पर एक सावली लड़की को खूबसूरत बताया जा रहा है, वरना तो दुनिया थक नहीं गई थी इस बात को लेकर कि सावला रंग कोई रंग नहीं होता और गोरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं याद कि सावली लड़की के ऊपर कोई इतना खूबसूरत गाना कभी पहले बनाओ, वरना गोरे रंग पे तो बहुत कमाल गाने बनाए दुनिया ने।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब वो वक्त आ रहा जहां पर आप और मैं यारा बोलते हैं मान ना मान करो गानों की पहचान। और आज के दो गाने मैंने आपके लिए डिसाइड कर लिए हैं। दोनों ही फिल्में बड़ी ही प्यारी हैं और दोनों ही गाने भी बहुत खूबसूरत हैं। गाने हैं कुछ यूं।

मैं आपको ज्यादा बड़ा हिंट तो नहीं दूंगी, लेकिन एक छोटा सा हिंट दूंगी, और वो ये कि ये दोनों ही फिल्म यश जी से रिलेटेड है। अब ये दो गाने कौन से हैं ये आप डिसाइड करो, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है, तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है,
1: दिल में मोहब्बत है।
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreya signing off. I will see you tomorrow. Khayal rakho apna. Good night.
2: Zindagi kaisi hai paheli haaye kabhi

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया।

0: यार नॉस्टैल्जिया इज माय फेवरेट जॉनरा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छी यादों में वापस जाना पसंद होगा, राइट? बस कुछ ऐसी ही पसंद को ध्यान पे रखते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक गिफ्ट मिला है हमें। सो बेसिकली देयर इज दिस लॉन्ग लॉस्ट फिल्म जिसका नाम है द लास्ट टेनेंट, और इस मूवी में लेट इरफान खान साहब अलॉन्ग विद विद्या बालन नजर आ रहे हैं लीड रोल्स निभाते हुए। वैसे इस फिल्म को दो दशक पहले यानी 25 साल पहले ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया था, विच वॉज शेल्व्ड एज वेल, इट वॉज नियरली फॉरगॉटन, बट एक बार फिर से ये मूवी रीसर्फेस हुई है ऑनलाइन, ऑफरिंग ऑडियंसेस अ रेयर चांस टू वॉच अनसीन परफॉर्मेंसेस स्पेसिफिकली बाय द लेट इरफान खान। सो इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सार्थक दास गुप्ता ने, प्रोड्यूस किया है नीना एंड सार्थक दास गुप्ता ने, विच फीचर्स यंग इरफान खान एंड विद्या बालन। ऑल्दो इस फिल्म को दो दशक पहले कंप्लीट कर लिया गया था बट इट वॉज नॉट रिलीज क्योंकि इस मूवी के कुछ ओरिजिनल फुटेजेस खो गए थे। And now after 25 years, इसको रिस्टोर किया गया है और YouTube पे रिलीज भी किया गया है। तो अगर आपको भी इस एक्टर रूपी जादूगर के परफॉर्मेंसेस पसंद रहे हैं, then don't forget to watch The Last Tenant on YouTube। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, बस यही वाली फीलिंग आ रही है संजय द स्टारर अपकमिंग फिल्म आखिरी सवाल से, क्योंकि सेंसर इश्यूज की वजह से ये फिल्म 8th ऑफ मई को अब रिलीज नहीं होने वाली है। सो ओरिजिनली द मूवी वाज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मई, लेकिन फिर उसको प्रीपोन किया गया। बट अब जब सेंसर इश्यूज आए हैं तो एक बार फिर से मेकर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डेट ऑफ 15th ऑफ मई। सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब कम से कम नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग की ये फिल्म 15th ऑफ मई को रिलीज हो ही जाए। राइटर एंड लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे इज सेट टू कंपोज म्यूजिक फॉर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा, और ये कोलैबोरेशन हो रहा है 18 साल बाद। यस यू हर्ड इट राइट। वैसे दिस इज दिस अपकमिंग सीरीज जिसका नाम है समर ऑफ 77। आपको क्या लगा समर ऑफ 69? Which is going to be set during the period of emergency in India, जिसमें राहुल भट्ट, ईशा तलवार, विशाल वशिष्ठ, सौरभ शुक्ला, रजत कपूर, मानव विज, टीजे भानु और अंजन दत्त जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। अनीस बाजमी की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म का केरलम स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया है नन अदर देन खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने। सो बेसिकली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर डाली जिसमें ही इज बीइंग सीन अलोंग विद विद्या बालन एंड राशि खन्ना। हां जी, ये उनकी कोस्टार्स हैं इन द मूवी विच इज गोइंग टू बी अ कॉमेडी ड्रामा इंस्पायर्ड बाय अ तेलुगु फिल्म संस्कृति की वस्थुनम। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

बॉडी लटीन चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं क्यों किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो।